0: संविधान
1: एक पुस्तक मार चुकी है,
0: संविधान
1: एक पुस्तक मार चुकी है, इसनू ना पढ़ो। इस दे लफ्ज़ां विच मौत दी ठंड है, देख एक सफा जिंदगी दे आखरी पल वर्गा भयानक। जद पुस्तक बनी सी तां मैं एक पशु सां, सुत्ता पिया पशु, ते जद मैं जाग गया ते मेरे इंसान बनन दी इह पुस्तक मर चुकी सी। हुण जे इस पुस्तक नूं पढ़ोगे तां पशु बन जाओगे, सुत्ते हुए पशु।

0: समिता एक पुस्तक मर चुकी है, इस ना पढ़ो। इस दे लफ्जा विच मौत दी ठंड है, ते एक सफा जिंदगी दे आखरी पल वर्गा भयानक। जद पुस्तक बनी सी तां मैं एक पशु सां, सुत्ता पिया पशु, ते जद मैं जागया ते मेरे इंसान बनन दी ये पुस्तक मर चुकी सी। हुण जे इस पुस्तक नूं पढ़ोगे तां पशु बन जाओगे, सुत्ते हुए पशु।
1: ये तो बड़ी सीडिशियस पोएम है।
0: बिल्कुल सीडिशियस है। तो वो नहीं है, एक जगह वो लिखता है पाश, कि मैं थकता गुंडिया की सल्तनत, हिंदुस्तान के निजाम वही इन

खिदमत में करने आया रहा हूँ, देख लो कौन है क्या है, तस्दीक कर लो, उसके बाद तो सब लिखा पढ़ी बन जाती है, देख लेना। अब उधर का जो है संभाले रहना, सब अधिकारी सब फोर्स इधर उधर कर रहे, हाई अलर्ट रहना, और उधर से कोई भी पत्रकार जो है मतलब जो नक्सलियों को कवर करने जाएगा उसको सीधा मरवा देना, समझ गए? राजा सर, राजा सर, वो कल के ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके।